साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जिया दे हजूर अरदास बेनती है जी। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साचिब खाना। जो मांगे ठाक गुरु अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। आप जी ने सतगुरु साहिब जी कृपा कीती है, दर करदे प्रीतवान आप दे सेवादार भाई अवतार सिंह सच्चे पातशाह जिन्हां नूं आप जी ने सोहनी गड्डी बख्श कीती है, आप जी का लख लख वारी शुकराना है। शुकराना करदे आं सच्चे पातशाह जी आप ने तरस कीता है, जो कि जपजी साहब के जाप करवाए हैं, सुखमनी साहब के जाप हुए हैं सच्चे पातशाह जी उपरंत। कुछ समय वास्ते गुरबाणी के कीर्तन छेव पौड़ियां आनंद साहब का जाप होया, पातशाह जी समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन नाम सिमरन का भाव सब दे हिरदे ते वसाउणा सच्चे पातशाह जी अपने सेवकां दी आव लाए रखनी, लई होई गड़ी सुखड़नी करनी सच्चे पातशाह जी। किरत कमाइया विच वाधे पाउणे, देशां विदेशां विच रहमतां प्रयास रखना, अमृत वेले की संभाल बख्शनी, अपने दर घर नाल जोड़ी रखना। आप जी ने सुंदर माला साहब भेट कीते हैं, अंगीकार करने सेवकां दे लोक परलोक विच पड़दे कजने ऐसरे बख्शियां खजानिया विचों। कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है, करी पाक साल सोज पवित्रा, हुण लाभ भोग राय आप जी दा सीध प्रसाद। जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, श्री मुख वाग दी बख्श करो। सही प्यारे मेल जिना मिलिया आमदा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

का मन सीत लायाओ। सलोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ पौड़ी।

अडरा को शर्म कर कलै जाका तसु नहीं संग चलै उआ डेरा की सो मित जाना जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा ने चल सच साध संग पाया नानक ते जन नह डोल आया श्लोक टाहन लागे तरम राए किने न कालो बंद नानक उबरे हर जप हरी साध संग सन बंद पौड़ी टड्डा ढूंढत कहो फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहारे प्रभ वसै बन बन कहाँ फेरा है तेरी टहो साध संग अहमबुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामे जम मरे गर्व जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हौ हौ आवे जाए टहत टहत अब टह परे साध जना सरनाए दुखे फाहे कटिया नानक लिए समाए श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो न तू नह छुट है निकट न जाई अहो दूत पौड़ी नाना रणते सीजिए आत्म जीतै कोय होमे अनको अन स्यो लर मरै सो सोबा दू होय मणि मिटाए जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीते हर मिलाए तह सूरतन वेस ना को जाने अपनो एक टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगलिया मन कर एऊ कर्म कमाए हुक्मे बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक ब्रह्म पौ कटिया चुकै जमकी जो है पौड़ी तत्ता दासो प्रीत कर गुण निद गोविंद राय

त्रास मिटै जम पंथ की, जास वसे मन नाओ, गत पावहि मत होए प्रगास, महली पावै ठाउ। ताहु संग न तन चलै, ग्रह जोवन नह राज, संत संग सिमत रहो, इह तुहार काज। ताता कछु न होई है, जो ताप निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें, अपे माई बाप। सलोक थाके बाविद काल ते, तृप्त न तृष्णा लाथ, संच संच साकत मुए, नानक माया ना साथ पौड़ी, थथा थिरको नहीं, काए पसारो पाव, अनक बंच

थैली संचो श्रम करहो थाक परोगा बार मन के काम न आवई अंते अवसर बार थित पावो गोविंद भजहो संत की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो इया साचा असने हो कारण करन करावनो सबद एक हाथ जित चित लावो चित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दस एक निहारे आ साब किछ देवन हा।

हर हर पूंजी नाम वेसाहा, तीरज जस सोभा तै बनया, हर हर नाम सरवन जय सुनया, गुरमुख जय कट रहे समाई, नानक तह जन मिल।

रण दर गए तो सीज भाई जो गुरमुख राम नाम लिव लाई रहत रहत रह जाए बेकार गुरपुर कै शब्द अपारा राते रंग नाम रसमते नानक हर गुर कीनी दाते श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत।

निज उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ,

बोलना जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। रंगद गुरते अमरदास रामदासी हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाव सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउन दयावे ताए। सब थाई होए सहाय।

आवन राग आसा महला पहला छह कर छह गुर छह उपदेश गुरु गुर एक होवे सनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वड़ाई तोए राहाओ विश्वे चसियां कड़ियां पैरा तिती वारी महो होवा सूरज को रुतनेक नानक करते के तेवेस राग तनासरी महला पहला गगन मैं थाल रोचन दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलियान लो पौन चौरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए बहुखन्ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत फेरी राहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंधे चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आहि पियासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरलिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडोत पुन वड्डा है राहाओ साकत हर साध न जानिया तिन अंतर हाउ मैं कंडा है ज्यो ज्यो चला है चुभै दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण बहु खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम धार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसंत सोहेला औद घटे दिन सरैना रे मन गुरमिल काज सवारे राहो एहो संसार विकार संसे मह तरे हो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अखत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पाहो सुख सहजे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई, माया मोह परम पूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास

साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माह मटावो सिमरो जास सुमरे कै नाम जत अगंत निक वेद प्राण सिमर सुदाख्यर किन्ने राम नाम के आख्यर इनका एक जस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व नाम बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कश बिघन न लागे प्रभ कै सिमरन अंदन जागे प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभ जी बसे साध के रसना नान जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन प्रवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दे अल्लाह नानक जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलियारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन अनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नान सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जिनको प्रभ में आ नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पै सिद जति दाते हर सिमरन नी चौ कुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल कारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जस आ बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ नाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संसाय जय मां भ्यान दूत जम दले ता केवल नाम संग तेरा चले
ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਏ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁੰਨ ਹੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਭਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾਮ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਾਵੈ। ਜੈ ਮਾਰਗੇ ਅਜਤ ਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਨ ਹੋ ਸੁਵੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਅਨਕ ਵਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੇ। ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੇ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੋ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣ ਜਾਏ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਸੰਤੋਸਾ। ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਾਨੰਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਹਾਰਾ। ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਂ ਸਿਆਨੂੰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ। ਜੈ ਮਹਾਂ ਪਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਮੇ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾਵਨ ਤੁਜਾ ਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨ ਜਨ ਕਹਿ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਪਰੇ ਨ ਭੰਗ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਿਸ਼ਨਾਏ ਵਿਯੋਗ।

जीवपिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोय न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उचा भगवंत। सरण समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक दिनार प्रछोड़ के लागे आन सुवाए, नानक कहु न सिजई, बिनावे पत जाए। अष्टपति दस पद तूले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिगोड़ गवावे। एक भी न दे दस पीर ले, तो मूड़ा को कां करे। जिस ठाकर से नाही चारा, ताको किजे साध नमस्कार। जाके मन लगा प्रमीठा, सब सुख ताऊ मन बूटा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सब थोक नानक तिन पाया। अग्न साहो अपनी देरास, खात पीत भरते अंधविलास। अपनी अमान किस बौर सावले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ते से आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक पांत माया के हेत, सरपर होवत जानन हेत। बिरकी छाया सु रंग लावे, ओ बिनसे ओ मन बजतावे। ज्योति से सो चल ना, लपट रहो ते अंधार। बटाओ से ओ जो लावे ने, ताको हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत, सुखदाई कर कृपा नानक। आप ले लाए मिथ्या, तन तन कुटुंब सवाया। मिथ्या में ममता माया, मिथ्या राजो तन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हथी अस्वस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया पेघ हस्ता, मिथ्या त्रो मोह अपमान। मिथ्या आपसु पर कर्त गुमान, आज तेरे भक्त साध के शरण। नान जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है, मिथ्या अस्त पर धर कोई रे। मिथ्या नेत्र पेघ पर तेरे अरूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चन पर विकार कुदावे, मिथ्या मन पर लोह लुभावे। मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बासलेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पे सबल दे, नानकार नाम ले।

जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सल कीरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैं आ ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिश अमृत वर्षी

ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभु संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम धार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अबुद्ध त्यागत

रस पीवे उस पंडित कहे उपदेश जा जीवे। हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो ना आवे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुखम मैं जाने अस्थूल चौं वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वरना मैं जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग भावे जन को हे कर कृपा अंतर उधारे बस प्रेत मुक्त पात्र को तारे।

मानु की टेक वृथ्वी सब जान देवन को एक कह भगवान जिसके दिए रहे अगाए भो न तिसना लागे आए मारे रखे को आप मान के कुछ नाई हाथ तिसका कंबू सुखोए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर पर सोए नानक विघ्न न लागे कोए उस मन में करन अंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सास हुला कर ले जियो नैनो बेग ठाकर का रंग सासंग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गो बिंद मिटे पाव जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बट पागे ते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तन बंद करी संसार मंतन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक बचाने तुद की ओ सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपना सुजे तिसकी जानो तिसना बुझे सा संग हर हर जिसका है सर्व रोग ते हर जन रहते अंदर कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोई निर्वाण

धन गए सब कोय मुख उजल हर दर गए सोए। हे उपार बिरला उपारे नानक तांगे सतब लिहारे जन साधके तुह तो पियो अर्प साधको अपना जियो साधके धूर करो इशनान साधु पर जाइये कुरबान साध सेवा वडभागी पाई है साध संगर कीर्तन गाइये आनक बिघन दे साधु राखे हर गुण गाये अमतरा चाके पे ओढ़ गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवते आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माए पुरु लिखे का लहना पाए।

होगा। हरन भरन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र ना जाने होर अनद्रुव मंगल सत जाके सर्व तोक सुनिया करता के राज में राज योग में जोगी तप में तबीसर किस्में भोगी त्याय त्याय भगतां सुख पाया नानक तिस पुरखा किने अंतर पाया। जा की लीला कीमत नाए सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोए अपने सूस मत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम ते आवे से तै गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए।

एक अंकार नाना चलत करे किनमाए पूरे ओ पून सब डाए नाना विद कर बंद बनाई अपने कीमत आपे पाई सब कर दिसके सब दिसके ठाओ जब जब जीवे नान घर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे सिमरत भेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के धारे अस्पताल नाम के धारे सगल कार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उतरे सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे पदमे सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरुख सब माए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रका सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत वचन साधु उपदेह सत्य जन जाके हृदय प्रवेश सत निर्द पूजे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसो करने हार एवं नमूज करत विचार करदे कीमत ना जाने किया नान जो दिस भावे सो वरतिया विस्मन विस्म भय विस्मार जन पूजा तिस आया स्वाद प्रभु कै रंग राजन रहे गुरु कै वचन पदार्थ लहे ओ दाते तू कट नार जाके संग तरे संसार जनका सेव सोड भागे जन के संग एक लिव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नान फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है बै सच नानक होसी भय सच अस्पजी चरण सत सत बसन हार पूजा सत सत सेवधार दर्शन सत सत बेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जय सुनता भोजन हार को सत सब होए नान सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण करावन तिन मूल पछाण्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन बटाया भय ते निरपो होए बसाना जिते उपजा तिस माए समाना बस्त माए लै बस्त कढाए

सेव की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे नंकारा, सो सेवक जे दया प्रभु धारे नानक, सो सेवक सास सास मारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखे, ताकि कदम को न लागे, प्रभु के सेवको को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस बटाया, निक्की कीरी में कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका साधन कर दिया, ताको रख दे करा, आत्मान जतन करत बात, से करता बिरते जात, मारे ना रखे अब न कोय, सब्जियां का रखा सोए काए, सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभु अलख बडाणी, बार बार बार प्रभु जपिया, पिए मते मंत्र पिया, नाम रतन जिन गुरु मुख पाया, तिसके जाऊ नाई दिष्टाया,

कथन कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसैवे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार। आख है मंगह देह देहे, दात करे दातार, फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार। मुह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिया सब आपे सचियार। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविय गुणी निदान। गाविय सुनिय मन रखिय पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख, बर्मा गुर पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाए करी। जे ती सिरठ उपाई, वेखा विण कर्मा के मिलै लई। मत

श्री भगवान को भेद न पायो, को बतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये, सब बैरन कौ आज संगरिये, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रासन वरिय, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करी हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरे चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते

अनाद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत भेदा जाको पेवना पावत बेदा ताको करपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उतपुज खान बहुर रचदीनी कहूं फूल राजा वै बैठा कहू सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाय चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार त्यह ताके काल निकट नह अह रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिसट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट छाह छुए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाये दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करे हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री असतुज जब पए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो याहे सो रस ना पावई सुनै मूड चित

चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस फुन तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

अनेक कह मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो। दोहरा

सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा, घरता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन

जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे विचारिया। एक परम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन

आवहो संत प्यारे ओहो अकथ की करह कहानी अकथ केरे कित द्वारे पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ हुक्म मन्या पाईऐ हुक्म मन्यो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संत हो कथयो हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीते जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनों आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।

अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचै कर गावहो, गावहो ता सोहिला कर साचै, जिथै सदा सच त्याव है। सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिना बुझाव है। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्से सो जन पाव है। कह नानक सच सोहिला सचै कर गाव है। अनद सुनो वडभागी ओहो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।

होवै सिफत खसम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया।

आया दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए।

ब्रह्म ब्रह्म मिलया कोई ना साकै भिन्न कर बलराम जियो बिसम पेखै बिसम सुनिया बिसमाद नदरी आया जल थल महियल।

प्रसन्न होके गुरु ने अपने चरण कमलों का आसरा दे दिता, अपनी टेक बख्शिश कर दिती है। तुस कह बलराम जियो, उस गुरु तो भाई बलहार जाइए, कुर्बान जाइए, जिन्ना ने कृपा करके शब्द की टेक दे दिती है। गुरपुर है पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी है, गुरु की टेक है, गुरु की वड्याई है, गुरु तो बलहार जाइए। हे गरीब निवाज, संसार वाले झात मारीए, किन्ना बादशाह वड्डे तो वड्डा शहनशाह होवे पर उहदे घर सारियां चीजां नहीं हुंदियां। जे जिन्नियां मर्जी पदार्थ वस्तुआं होण, डर जरूर बणिया रहिंदा कितें घटदियां घट ही ना जाण, पर सतगुरु जी तुहाडा ऐसा भंडारा जे तुहाडे घर विच सारी पदार्थ ने ते कदे घटदे ही नहीं है। और जो जो जीव आके मंगदे ने सो सो तुसीं दिंदे हो। अगले बोल होर बड़े प्यारे ने।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज्य अभिमान सो नरक पाती होत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सोत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन मरे बो जोन परमावे धन भूमिका जो करे गमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी हा मुक्तागे सुख पावे तनवंता हुई कर गरबावे तृण समानक संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर तांका हुई बिनास सबते आप जने बलवंत खिनमा हुई जाय पसमंत किसे न बदे आप हंकारी धर्म राय तिस करे खबारी गुर प्रसाद जा का मिटिया अभिमान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हउ तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं दरवै हर दरगाह को कैसे गवे आप सको जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे सर्व किरण जा का मन हुए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुस हुए तब इसको सुख ना ही कोई जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मा

भगत कर आए। गौर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम सवैया।

कदे न जाई। हर नाम रसना कहना मल पाप कलमल दहना चढ़नाव संसार बैतरे सागर बार।

0: कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे
0: कई कोट ब जानी फिरे
1: कई कोट बैठ ही गाए
0: कई कोट काले थक पाए
1: कई कोट किए धनवंत
0: कई कोट माया मैं चैन।

0: अपने चलते आप करने हार
1: होता करे रंग अपार
0: मन में मने अपने माँ है
1: नानक कीमत कहन न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुर प्रसाद किने वखियानी
0: सच सच सत

0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राजतहीन,
0: संत का निंदक दुख यार दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग।

0: निरासा।
1: संत के दोगन दृष्टे कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए।
1: पया कीर्तन मिटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब कर दिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा।

0: मन संतोखा संपत्ति अन्य
1: पूरा गुरु आख्यो जागा मंत्र
0: अमृत देश पेखे होय संत
1: बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस

0: सभी दुख नाठे पाई
1: जन मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूरने उपदेसे
1: औजु का निर्भव होए बसे
0: सगल ब्याद मन के खै नसे
1: जिसका साथ इन

0: निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: आपने आप ही चर जा
1: नानक के आपन रूप आप ही हो पर जा
0: निर्मल।

0: छल छिदर लगत को कीसा
1: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: मैं किसे भूख अमन तृप्तावे
1: कर्ण करावन करने हार
0: नानक करते का नाई सुमार
1: अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: तब कमन माए बाप मितर सुत पाई।

जागर देखा सामने सजन सचा पात साहो सिर साहां दा साहो जिस पास बैठे आ सो ही है।

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत काश बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै।

प्रभु को सिमरहे से तनवंते, प्रभु को सिमरहे से पतिवंते, प्रभु को सिमरहे से जान परवान, प्रभु को सिमरहे से पुरख प्रदान।

अनिक बिघन जह आय संघार है अरका नाम तत्काल उधार है अनिक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पाव है विश्राम। हो मैला मल कप हु न धोवे अरका नाम कोट पाप खोवे सा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध कै संघ।

हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जान हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की

अगन माहे हो मत परान कनक असभ है वर भूम दान न्योली कर्म करे भो आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कार

अनेक जतन कर त्रिसन त्रापे भेख अनेक अगन नहीं बुझे कोड़ पाप दर गह नहीं सिजै छूटस नाही उब पयाल मुहे ब्या पे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए।

जे को अपनी शोभा लोरै सार संग हे होमै शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस काओ जो जाने नीचा सो घनिय साबते ऊंचा

आपनी गात मित जान हो आपे आपन संग आप रब राते तुमरी उस्तत तुम दे होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठता।

जिसकी बस्त से आगे रख प्रभ की आगे मन मथ उसते चौगन कर निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओह बिनसै ओह मन पछतावे जो दिसै।

जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावहे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सास सास सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करेह जे प्रसाद आ भूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यो आलस कीजै जे प्रसाद असभस सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बेसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राग पुरे प्रभ अपने मना जिन तेरी मान बनत बनाई उठत बैठ सद से त्याई तिसे त्याई जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख जे प्रसाद करे पुन बोदान मन हट पैर कर तिसका ध्यान

जय प्रसाद तेरी निकी जात, स्वप्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जय प्रसाद सुनहे करन नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्तकर चलहे, जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पावहे, जय प्रसाद सुख सहज समावहे। ऐसा प्रभ दया गबर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू तास्यो राच। जय प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सोनाओ, आप गवाए सुहार गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मातु उत्तम होए।

अगम गाद बार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी सारक संग खुजल होत सात संग मल सगली खोत सारक संग मटे अभिमान सारक संग प्रगटे सो ज्ञान सारक संग बुझे प्रभ नेरा सात संग सब होत निबेरा सारक संग पाए नाम रतन सारक संग एक ऊपर जतन सार की महिमा बरना कौन परानी नानक सार की शोभा प्रभ महेश मानी सारक संग अगोचर मिले सारक संग सदा पर फुल्ले सारक संग आवह पस पंचा सार संग अमृत रस पुंचा सार संग होए साप की रेन सारक संग मनोहर बैन सारक संग न कत हूं तावै सार संग स्थित मन पावै सारक संग माया ते भिन्न सार संग नानक प्रभ सुप्रसन्न सार संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत सार

आप साधक संगत साधक संग तजै सब आप आपे जाना साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग न कब हूं तावै साधक संग सदा सुख पावै सा संग बस्त गोचर लह साधु के संग अजर सह साधक संग बसै थान ऊचै साधु के संग महल पहुंचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साध संग केवल साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटाम निस्तारै साधु कै संग सोतन पावै

ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक जो पावक का सहज सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लाग गया जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही बमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जन प्रभ आव करे। ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्म रास, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता आवत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी क्या होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी क्या रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या बसा प्राप संग, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम परवार।

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का हो अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मैत कौन बरगान, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान।

ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार।

इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन बिसन की माया ते हो भिन्न कर्म करत हो वै नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाशै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक हो वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्याग दुष्ट का संग मन ते मनसै सकला परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म सार संग पापा मलख होवै तिस भगवती की मात उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नावै वेद पुराण सिमरत पूजा मूल सुख मैं जाने असथूल चह वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चह वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सात संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतार पास प्रेत मुगत पाथर को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित ना पाइया धर्म नानक तिस मिले जिस

कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जन्मे, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीव है मरे, कई कोट बोजोनी फरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट की अतनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जय भाणा तह तह राखे, नानक साहब किस प्राप्त कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग दिन दिवलागी, कई कोट प्रभ को खो जानते, आत्मे पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मागे सत्संग, पार ब्रह्म दिन लागा रंग, जिनको है आप सुप्रसन्न, नानक तेन सदा नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे।

कई कोट पार भ्रम के दास तिन हो बता तम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोण नाम रस पीव है अमर भय सद हद ही जीव है कई कोण नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास आस मारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक रिस बलिहारण जल थल मही अल सोए अष्टपदी करन करावन करना जोग ज्योतिष भाव सोई होग खिन में था पोथा पनहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तारा तार रहावे हुक्मे उपज हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड़े आई नानक साहब में रहा समाई प्रभ भावे मानुख गत पावे प्रभ भावे तब पाथर त्रावे प्रभ भावे बिन सास से राख है प्रभ भावे त हर गुण पाख है प्रभ भावे त पत उधार है आप करे अपन विचार है दोहा श्रिया का आप स्वामी खेले भिक्षे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरना आवे कहो मानुख ते क्या होए आवे ज्योतिष भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता साब किछ दे ज्योतिष भावे सोई करे अनजानत भिख्या मैं रचै जे जानंद आपन आप बचै पर मैं भूला दह दिस्तावै निमख माहे चार कुंड फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्टि कछु ना आवै दिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बखसीस ताका लेखा नांगना जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप नाई नानक जीवै देख बढ़ाई